0: heard from them again.
1: क्या आप बेहतर करियर की तलाश में हैं? योग्यता से कहीं अधिक वो नौकरी पाने का वास्तविक मौका जो आप वास्तव में चाहते हैं AAS ऑस्ट्रेलियाई शैक्षणिक समाधान ये उद्योग प्रशिक्षण और बेहतर कार्य अवसरों के लिए आपका मार्ग है ऑस्ट्रेलियन एकेडमिक सॉल्यूशंस अनुकूलित समाधान प्रदान करता है सुरक्षा निर्माण यातायात नियंत्रण में व्यवहारिक प्रशिक्षण के साथ और आतिथ्य सत्कार बस कुछ ही नाम है आइए और सीबीडी में 45 मुरे स्ट्रीट पर लेवल 3 पर हमसे मिलें और आज ही सही कौशल के साथ तेजी से नियुक्ति पाएं
2: जस्ट सर्च ऑस्ट्रेलियन एकेडमिक सॉल्यूशंस डू यू नो एन ऑसम फादर और फादर फिगर गिव देम द रिकॉग्निशन दे डिजर्व बाय नॉमिनेटिंग देम फॉर एन ऑस्ट्रेलियन Fathering Award. Go to AustralianFatheringAwards.org.au to nominate and learn more.
3: What's up? Need a reliable electrician? Call DT Powertech because you don't need any hassle when it comes to your home safety. And you'll be shocked to know they stand by their work with a DT Powertech 5-year guarantee. They'll keep you grounded with residential and general electrical. And DT Powertech can even install your new air conditioner. So if you're amping up for a reno or just need a sparky, get DT Powertech on the job. DTPowertech.com.au.
4: What do Six and Artery have in common? Well, with purchases on the 6th of every month till December, Artery loyalty card holders get double points. Why? Because it's Artery's 50th birthday, and they'd like to thank you for your support. So save on the 6th of every month and receive 2 stamps for every $25 spent. Terms and conditions apply. Artery, trusted for generations. 137 Collins Street, arterydirect.com.au.
5: Recycle Rewards gives you a 10 cent refund for every eligible drink container returned. In Tasmania, some containers like glass wine and spirit or plain milk bottles can't be returned. If you're not sure, use the handy container checker on our app or at recyclerewards.com.au.
0: Now, back to the...